अस्सलाम वालेकुम, एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से महमूद मलिक और वसीमा आबिद हाजिर हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 अक्टूबर रात 9 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे की खबरें पेश खिदमत हैं। जनूब मगरबी जापान के ओकिनावा में पुलिस ने प्रीफेक्चर में तैनात एक अमरीकी मैरीन को मकामी खातून के कत्ल और डकैती के शुबे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि खातून की मौत दम घुटने से हुई। मुलजिम 20 साला डेविन जैकब बालाट है, जो अमरीकी मैरीन कोर के फुतेनुमा फिजाई अड्डे पर तैनात है। इतलात के मुताबिक उसने शहर के एक होटल में हफ्ते की सुबह तकरीबन 2 बजे से 4 बजे के दरमियान नाहा की 39 साला रहायशी यागी अन्ना को कत्ल कर दिया। बालाट पर उसका पर्स और दीगर सामान चोरी करने का भी शुबा है। पुलिस का कहना है कि मकतूला की लाश के तफसीली मुआयने से मालूम हुआ है कि उसकी मौत गर्दन पर दबाव के बायस दम घुटने से हुई। सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी खातून के साथ होटल के कमरे में दाखिल हुआ और बाद में खातून का सामान लेकर चला गया। फुटेज में मौजूद शख्स के बाल और टैटू मुबैना तौर पर बालाट से मिलते जुलते हैं। जापान अमरीका स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट के तहत अमरीकी हुकाम को बुनियादी हक हासिल है कि वह सरकारी फराइज मनसूबी के दौरान अमरीकी फौजी एहलकारों के किए गए जुराइम पर दायरा इख्तियार इस्तेमाल करें। इस माहदे में यह भी कहा गया है कि ड्यूटी के औकात के अलावा किए गए जुराइम की सूरत में अगर मुश्तबा अफराद अमरीका के पास हैं तो वह उस वक्त तक अमरीकी हिरासत में रहेंगे जब तक जापानी जानिब से उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जाती। पुलिस को हफ्ते की रात देर गए ओकिनावा शहर में मस्कूरा होटल से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर एक तफरी इलाके से बालाट मिला। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इस मुकदमे का अमरीकी फौजी ड्यूटी से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने इल्जामात की तर्दीद करते हुए कहा कि वो नहीं जानता। जापान की वजीर आजम ताकाइची सानाई का कहना है कि जापानी हुकूमत ने ओकिनावा में तैनात अमरीकी मैरीन की डकैती और मकामी खातून के कत्ल के शुबे में गिरफ्तारी के बाद अमरीका से शदीद एहतजाज किया है। ताकाइची ने इतवार के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह का इंतहाई सफाकाना और घनौना वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी लिखा कि हुकूमत ने तहकीकात में मुकम्मल अमरीकी तआवुन, अमरीकी फौजी एहलकारों में नज्म जब्त को सख्त बनाने और वाकयात और सानेहात के इयादे की रोकथाम के लिए मुकम्मल इकदाम का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने वादा किया कि हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश करेगी। जापान के वजीर दिफा का भी कहना है कि उनकी वजारत ने अमरीका से सख्त एहतजाज किया है। कोयजुमी शिंजुरो ने इतवार को कानागावा प्रीफेक्चर में सहाफियों से बात करते हुए वाकये को शर्मनाक करार देते हुए बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया वजारत दिफा ने अमरीका से कहा है कि वह अपने फौजी एहलकारों की इखलाकी तरबियत पर तवज्जो दे और मुतासरा खानदान के लिए फौरी और मौजू रद्द अमल का इजहार करे।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापान के ओगासावारा जजायर के करीब पानियों में पीर से मंगल तक एक बड़ा और इंतहाई शदीद समंदरी तूफान शिमाल की तरफ बढ़ने की तवक्को है। जापान की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि पीर की सुबह 6 बजे तक समंदरी तूफान चोईवान 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ओगासावारा जजायर के करीब शिमाल की जानेब बढ़ रहा था। समंदरी तूफान का मरकजी दबाव 925 हेक्टो पास्कल था। इसके मरकज के करीब 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी, जबकि 252 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ उठ रहे थे। तूफान की मशरकी जानिब 220 किलोमीटर और उसकी मगरबी जानिब 165 किलोमीटर के अंदर अंदर 90 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की तेज हवाएं चल रही थी। ओगासावारा जजायर के करीब समंदर में शदीद तुगयानी होगी, जबकि पीर और मंगल को लहरें 8 मीटर तक बुलंद होने की तवक्को है। हवाएं भी तेज होंगी। मंगल तक हवा की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने और 108 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चलने की पेशगोई है। मौसमियाती हुकाम लोगों को बुलंद होती लहरों, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से चौकन्ना रहने का कह रहे हैं। ब्राजील के सदारती इंतखाब का हतमी मरहला दाएं बाजू के सेनेटर फ्लाविओ बोल्सोनारो और बाएं बाजू के मौजूदा सदर लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के दरमियान 25 अक्टूबर को होगा। इंतखाबी हुकाम का कहना है कि इंतखाब के पहले मरहले में किसी उम्मीदवार ने भी अक्सरियती वोट हासिल नहीं किए। सदारती इंतखाबात इतवार के रोज मुनाकिद हुए। इंतखाबी हुकाम का कहना है कि 98.6% वोटों की गिनती मुकम्मल होने के साथ साबिक सदर जेयर बोल्सोनारो के बड़े बेटे बोल्सोनारो को 47.2% वोटों के साथ सबकत हासिल थी। लूला 44.8% के साथ दूसरे नंबर पर थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान बोल्सोनारो ने सलामती इकदामात को मजबूत बनाने और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के साथ मिलकर दीगर पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया था। लूला ने बड़ी ताकतों को मदाखलत की इजाजत दिए बगैर शहरियों के दरमियान तफावत कम करने और कौमी खुदमुख्तारी बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज रखी। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाबी मुहिम के दौरान सख्त मुसाबकत रही है। पीर को योकोता मेगुमी की 62वीं सालगिरह है, जिसे शिमाली कोरिया ने जूनियर हाई स्कूल के पहले साल के दौरान अगवा कर लिया था। इस मौके पर उसकी वालदा साकिये ने अपनी बेटी की जल्द अज जल्द वापसी की अपील की। इस साल 90 वर्ष की होने वाली साकिये ने कहा कि वो गुस्से और मायूसी का शिकार है कि तकरीबन 50 साल तक इतनी मेहनत करने के बावजूद वो अपनी बेटी की आवाज तक नहीं सुन सकती। मेगुमी को शिमाली कोरिया के एजेंटों ने 49 साल कबल 15 नवंबर 1977 को बोहिरा जापान के साहिल पर वाकया नीगाता शहर में स्कूल से घर जाते हुए अगवा कर लिया था। 90 साल की उम्र में साकिये हुकूमत की तरफ से तस्लीम शुदा और अब तक लापता मगवियान के जिंदा वालदेन में आखिरी शख्सियत हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इस मसले से लोगों को आगाह करने के लिए जापान भर का सफर करने के बावजूद कोई मालूमात सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि पहले वो मेगुमी की सालगिरह पर केक खरीदती थी, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि अब कई सालों से उन्होंने केक खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि वो एक ही अमल को बार बार दोहराने के काबिल नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब भी वो इस गर्मजोशी को नहीं भूल सकती जो उन्होंने अपनी बेटी की पैदाइश के वक्त महसूस की थी।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां। जनूब मगरबी जापान के ओकिनावा में पुलिस ने प्रीफेक्चर में तैनात एक अमरीकी मेरीन को मकामी खातून के कत्ल और डकैती के शुबे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि खातून की मौत दम घुटने से हुई। मुलजिम अमरीकी मेरीन कोर के फुतेनुमा फजाई अड्डे पर तैनात है। जापान की वज़ीर आज़म ताकाइची सानाए का कहना है कि जापानी हुकूमत ने ओकिनावा में तैनात अमरीकी मेरीन की डकैती और मकामी खातून के कत्ल के शुबे में गिरफ्तारी के बाद अमरीका से शदीद एहतजाज किया है। वज़ीर आज़म ताकाइची ने इतवार के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह का इंतहाई सफाकाना और घनौना वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 6 अक्टूबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिकों के परिजनों ने प्रधानमंत्री ताकायची सानाए से आग्रह किया है कि वे सभी अपहृतों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए मजबूत राजनय का सहारा लें। मंगलवार को योकोता ताकुया और ईजुका कोइचिरो ने पिछले महीने की अपनी अमेरिका यात्रा का ब्यौरा प्रधानमंत्री ताकायची को दिया। योकोता अपहृतों के परिजन समूह के प्रमुख हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी का 13 वर्ष की आयु में अपहरण कर लिया गया था। वहीं ईजुका जब 1 वर्ष के थे तब उनकी मां तागुची याइको को अगवा कर लिया गया था। योकोता और ईजुका जापानी सांसदों के साथ अमेरिका गए थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर उनका सहयोग मांगा था। योकोता ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे जरा सोचें कि अगर उनके किसी बच्चे का अपहरण हुआ होता तो उन्हें कैसा लगता। योकोता ने इच्छा व्यक्त की कि जापान सरकार मजबूत राजनय का सहारा ले ताकि उनकी मां अपनी बेटी मेगुमी से जल्द मिलकर उसे गले लगा सकें। योकोता ने बताया कि सोमवार को मेगुमी का 62वां जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक लंबा और कष्टदायी जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। योकोता ने अफसोस जताया कि वे अपहृतों को बचाने में नाकाम रहे। जापानी जांचकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय हैकिंग गिरोह के प्रमुख संदिग्ध

उस डेटा को जारी करने के लिए फिरौती मांगता है। जापान और अन्य देश इस गिरोह का मिलकर पता लगा रहे थे कि तभी अधिकारियों को सूचना मिली कि संदिग्ध जापान में है। खबर है कि मई में जापानी जांचकर्ताओं ने जापान के पश्चिमी शहर ओसाका में संदिग्ध को हिरासत में लिया था। जापान की चिप निर्माता रैपिडस का कहना है कि विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से वो 17 घरेलू और विदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है। कंपनी अगली पीढ़ी के अर्धचालकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास तेज कर रही है। इस उद्यम में तोशिबा समूह की एक कंपनी, दाई निप्पोन प्रिंटिंग और तोप्पान जैसी जापानी कंपनियां हैं तथा विदेशों से अमरीकी और भारतीय कंपनियां हैं। रैपिडस का कहना है कि ये साझेदारी रैपिडस कोर नामक एक नए ढांचे का पहला चरण है। इस पहल के तहत चिप के डिजाइन और उत्पादन से जुड़ी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाया गया है। उन्नत चिप क्षेत्र में कामगारों की कमी के बीच ये पहल की गई है। रैपिडस कंपनी अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उत्तरी जापान के होक्काइडो में 2 नैनोमीटर की उन्नत चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना चाहती है। जापान सरकार ने लगभग 30 खरब येन यानी करीब 19 अरब डॉलर की सहायता देने का वायदा किया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त में हस्ताक्षरित संयुक्त रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में सैन्य बलों की शीघ्र तैनाती के लिए आवश्यक उपाय करने का फैसला किया है। तीनों देशों ने सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक आपात बैठक की। सऊदी अरब और पड़ोसी देश यमन में सरकार विरोधी गुट हूथी के बीच जारी हमलों के बीच ये बैठक हुई है। बाद में जारी एक संयुक्त वक्तव्य में हूथी विद्रोहियों का नाम लिए बिना सऊदी अरब पर ताजा हमलों की कड़ी निंदा की गई। वक्तव्य में कहा गया कि तीनों देश त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार सामूहिक रक्षा से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के व्यवहारिक कार्यान्वयन की दिशा में तत्काल कदम उठाएंगे। वक्तव्य में आगे कहा गया है कि समझौते के तहत बनी सहमति के आधार पर वे सऊदी अरब में सैन्य बल व साधन उपलब्ध कराने और उनकी त्वरित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग में राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। पश्चिमोत्तरी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। यह क्षेत्र इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी पीटीआई का गढ़ है। इमरान खान को 2022 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और 2023 में उन्हें भ्रष्टाचार व अन्य आरोपों में जेल भेज दिया गया था। उनके समर्थकों के अनुसार ये आरोप राजनीति से प्रेरित थे। इमरान खान की तीन बहनों को पिछले महीने सार्वजनिक व्यवस्था कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारी उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। नेपाल चीन सीमा पर अगस्त में आई भीषण बाढ़ की आपदा के बाद नेपाल सरकार ने तलाश और बचाव अभियान स्थगित करने का फैसला किया है। सरकार ने सोमवार को सैन्य और पुलिस कर्मियों से जुड़े अभियानों को स्थगित करने की घोषणा की। अब केवल आवश्यक तलाश और बचाव कार्य ही किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि आपदा के 40 दिन बाद जीवित लोगों के मिलने की संभावना कम है। उन्होंने बताया कि नई जानकारी मिलने पर अभियान फिर से शुरू किए जाएंगे। 26 अगस्त को आई इस आपदा में नेपाल में 1455 लोग मारे गए और 5200 से अधिक लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी हैं। चीनी मीडिया ने बताया कि चीनी क्षेत्र में 43 लोग मारे गए और 510 से अधिक लापता हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से।

शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाओ ने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अरो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबत्सुकान वा हिदारी नी अरिमासु।
0: संग्रहालय बाई तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमाश्ता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोजाइमासु।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का,
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबत्सुकान
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तारा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तारा ई देसु का। इत्तारा
1: है क्रिया
4: इकु,
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: दो इत्तारा ई देसु का निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का। निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: अनो सुमिमासेन। किनकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का? 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
5: अनो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किंकाकुजी
1: है किंकाकुजी मंदिर, जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
6: 101 番のバスに乗ってください。
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101 番
1: का अर्थ है 101 नंबर।
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: 乗って
1: है क्रिया
4: 乗る
1: यानी चढ़ना का ते रूप। इसलिए
4: 乗ってください
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう言ったらいいですか?金閣寺までどう言ったらいいですか?あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか?
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
1: तो
4: अनो सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी मिगी हिदारी हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मास्सुगु।
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मास्सुगु मास्सुगु।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: माइक 似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
4: トラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइतो हाईवे बस लेकर मिए प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
1: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है, क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
0: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
1: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में काइतो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
8: होकुसाई फोसो रेडियो निप्पन देस। टोक्यो からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 6 अक्टूबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिकों के परिजनों ने प्रधानमंत्री ताकायची सानाए से आग्रह किया है कि वे सभी अपहृतों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए मजबूत राजनयिक का सहारा लें। मंगलवार को योकोता ताकुया और ईजुका कोइचिरो ने पिछले महीने की अपनी अमेरिका यात्रा का ब्यौरा प्रधानमंत्री ताकायची को दिया। योकोता अपहृतों के परिजन समूह के प्रमुख हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी का 13 वर्ष की आयु में अपहरण कर लिया गया था। वहीं ईजुका जब 1 वर्ष के थे तब उनकी मां तागुची याइको को अगवा कर लिया गया था। योकोता और ईजुका जापानी सांसदों के साथ अमेरिका गए थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर उनका सहयोग मांगा था। योकोता ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे जरा सोचें कि अगर उनके किसी बच्चे का अपहरण हुआ होता तो उन्हें कैसा लगता। योकोता ने इच्छा व्यक्त की कि जापान सरकार मजबूत राजनय का सहारा ले ताकि उनकी मां अपनी बेटी मेगुमी से जल्द मिलकर उसे गले लगा सकें। योकोता ने बताया कि सोमवार को मेगुमी का 62वां जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक लंबा और कष्टदायी जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। योकोता ने अफसोस जताया कि वे अपहृतों को बचाने में नाकाम रहे। जापानी जांचकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय हैकिंग गिरोह के प्रमुख संदिग्ध को हिरासत में लिया था जिस पर दुनिया भर की कंपनियों पर साइबर हमले करने का आरोप है। जांच सूत्रों के अनुसार इस महीने के शुरू में संदिग्ध को जर्मनी के अधिकारियों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध 28 वर्षीय रूसी नागरिक है जो किलिन नामक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का एक प्रमुख सदस्य है। माना जाता है कि किलिन गिरोह ने कई वर्षों से रैंसमवेयर हमलों को अंजाम देकर दुनिया भर की कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रैंसमवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी कंपनी के डेटा को बिना अनुमति इनक्रिप्ट कर देता है।

के अर्धचालकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास तेज कर रही है। इस उद्यम में तोशिबा समूह की एक कंपनी, दाई निप्पोन प्रिंटिंग और तोप्पान जैसी जापानी कंपनियां हैं तथा विदेशों से अमरीकी और भारतीय कंपनियां हैं। रैपिडस का कहना है कि ये साझेदारी रैपिडस कोर नामक एक नए ढांचे का पहला चरण है। इस पहल के तहत चिप के डिजाइन और उत्पादन से जुड़ी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाया गया है। उन्नत चिप क्षेत्र में कामगारों की कमी के बीच ये पहल की गई है। रैपिडस कंपनी अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उत्तरी जापान के होक्काइडो में 2 नैनोमीटर की उन्नत चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना चाहती है। जापान सरकार ने लगभग 30 खरब येन यानी करीब 19 अरब डॉलर की सहायता देने का वायदा किया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त में हस्ताक्षरित संयुक्त रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में सैन्य बलों की शीघ्र तैनाती के लिए आवश्यक उपाय करने का फैसला किया है। तीनों देशों ने सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक आपात बैठक की। सऊदी अरब और पड़ोसी देश यमन में सरकार विरोधी गुट हूथी के बीच जारी हमलों के बीच ये बैठक हुई है। बाद में जारी एक संयुक्त वक्तव्य में हूथी विद्रोहियों का नाम लिए बिना सऊदी अरब पर ताजा हमलों की कड़ी निंदा की गई। वक्तव्य में कहा गया कि तीनों देश त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार सामूहिक रक्षा से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन की दिशा में तत्काल कदम उठाएंगे। वक्तव्य में आगे कहा गया है कि समझौते के तहत बनी सहमति के आधार पर वे सऊदी अरब में सैन्य बल व साधन उपलब्ध कराने और उनकी त्वरित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग में राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। पश्चिमोत्तरी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। यह क्षेत्र इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी पीटीआई का गढ़ है। इमरान खान को 2022 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और 2023 में उन्हें भ्रष्टाचार व अन्य आरोपों में जेल भेज दिया गया था। उनके समर्थकों के अनुसार ये आरोप राजनीति से प्रेरित थे। इमरान खान की तीन बहनों को पिछले महीने सार्वजनिक व्यवस्था कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारी उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। नेपाल चीन सीमा पर अगस्त में आई भीषण बाढ़ की आपदा के बाद नेपाल सरकार ने तलाश और बचाव अभियान स्थगित करने का फैसला किया है। सरकार ने सोमवार को सैन्य और पुलिस कर्मियों से जुड़े अभियानों को स्थगित करने की घोषणा की। अब केवल आवश्यक तलाश और बचाव कार्य ही किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि आपदा के 40 दिन बाद जीवित लोगों के मिलने की संभावना कम है। उन्होंने बताया कि नई जानकारी मिलने पर अभियान फिर से शुरू किए जाएंगे। 26 अगस्त को आई इस आपदा में नेपाल में 1455 लोग मारे गए और 5200 से अधिक लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी हैं। चीनी मीडिया ने बताया कि चीनी क्षेत्र में 43 लोग मारे गए और 510 से अधिक लापता हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाओ ने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अरो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकबिस्कन मारे दो इत्तरा ई देस का।
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबुत्सुकान वा हिदारी नी अरिमासु।
0: संग्रहालय बाईं तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमाश्ता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोजाइमासु।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबुत्सुकान मारे दो इत्तरा ई देसु का,
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबुत्सुकान
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तरा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे,
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तरा ई देसु का। इत्तरा
1: है क्रिया
4: इकु,
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: दो इत्तरा ई देसु का। निंजा हकुबुत्सुकान मारे दो इत्तरा ई देसु का। निंजा हकुबुत्सुकान मारे दो इत्तरा ई देसु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
5: あの、すみません。
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देसु का।
0: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किंकाकुजी
1: है किंकाकुजी मंदिर, जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
6: 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई।
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101 बान
1: का अर्थ है 101 नंबर,
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: नोत्ते
1: है क्रिया
4: नोरु
1: यानी चढ़ना का ते रूप, इसलिए
4: नोत्ते कुदासाई
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
1: तो
4: अनो सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी, मिगी, हिदारी, हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मास्सुगु।
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मास्सुगु, मास्सुगु।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: माइक नियाउ ने, かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइतो हाईवे बस लेकर मिए प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
1: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है, क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
0: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योतो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
1: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में काइतो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo

ये NHK World जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सेटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त में तय पाने वाले अपने मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब में तेजी से फौजी दस्तों की तैनाती के लिए जरूरी इकदाम करने का फैसला किया है। तीनों ममालिक ने पीर को सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी अरब और पड़ोसी मुल्क यमन के हुकूमत मुखालिफ हौसी बागियों के दरमियान हमलों का तबादला जारी है। बाद में जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में हौसी बागियों का नाम लिए बगैर सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मुजम्मत की गई। बयान में कहा गया है कि तीनों ममालिक से फरीकी मुआहदे के मुताबिक अपने मुश्तरका दिफाई वादों पर अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर पेशरफ्त करेंगे। बयान में ये भी कहा गया है कि वो सऊदी अरब में तय शुदा फौजी दस्तों और सलाहियतों की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदाम करेंगे और उनकी तेज़ी से तैनाती यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के हामी उन्हें कैद से रिहा करने का मुतालबा करते हुए दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हजारों लोग इतवार के रोज सड़कों पर निकल आए, जहां पर खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की बुनियादी ताकत है। इमरान खान को 2022 में इख्तदार से बेदखल कर दिया गया था और अगले ही साल उन्हें बदनवानी और दीगर इल्जामात में जेल भेज दिया गया। उनके हामियों का कहना है कि इन इल्जामात का सबब सियासी था। खान की तीन बहनों को गुज़िश्ता माह अमनियामा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। मुजाहिरीन उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। नेपाली हुकूमत ने चीन के साथ वाक़े अपने सरहदी इलाके में अगस्त में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने और अचानक आने वाले सैलाब की तबाही के बाद तलाश और बचाव के कामों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। हुकूमत ने नागुजीर तलाश और बचाव की कोशिशों के अलावा फौज और पुलिस के एहलकारों पर मुश्तमिल कार्रवाइयों को रोकने के फैसले का ऐलान पीर को किया। हुकाम ने कहा कि आफत के 40 दिन बाद जिंदा बच जाने वालों को ढूंढ निकालने का इम्कान कम है। उन्होंने कहा कि अगर नई मालूमात सामने आई तो कार्रवाइयां दोबारा शुरू की जाएंगी। 26 अगस्त को आने वाली आफत में नेपाल में 1455 अफराद हलाक और 5200 से ज्यादा लापता हुए। लापता होने वालों में 5 जापानी शहरी शामिल हैं। चीनी ज़राए इब्लाग ने खबर दी है कि सरहद की चीन की जानिब 43 अफराद हलाक हुए और 510 से ज्यादा अब भी लापता हैं। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। शुमाली कोरिया के हाथों अगवा शुदा जापानी शहरियों के अहले खाना ने वजीर आजम ताकायची सनाए पर जोर दिया है कि वो तमाम मगवियान को जल्द अज जल्द वापस लाने के लिए पुरजोर सिफारतकारी करें। और जापानी तफ्तीशकारों ने एक बैन अलावामी हैकिंग ग्रुप के एक मुश्तबा अहम रुकन को हिरासत में लिया है। इस ग्रुप पर दुनिया भर की कई कंपनियों के खिलाफ साइबर हमले करने का इल्जाम है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 32واں سبق راستہ پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ہائی وے بسوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور امریکی شہری مائک، جو جاپان کے نینجا کا شوقین ہیں، ہائی وے بس کے ذریعے نیے پریفیکچر کے وینوشی اسٹیشن پہنچے ہیں۔ اسٹیشن کے قریب واقع کرائے کے کپڑوں کی دکان سے مائک نے نینجا کا بہرو بھرا ہے۔ اب وہ دونوں نینجا میوزیم کی جانب جا رہے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 32 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: مائک نیاؤ نے کاکوئی
3: اُریشی نا۔ آنو سمی ماسن، نینجا 博物館 までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: काइटो माइक के बहरूप की तारीफ करते हुए कहता है,
2: माइक नियाउ ने।
0: माइक यहाँ पर जच रहा है।
2: काकोई।
0: उम्दा होलिया।
1: माइक जवाब देता है,
3: उरेशी ना।
0: मुझे खुशी है।
1: माइक रास्ता पूछने के लिए एक राहगीर से मुखातिब होता है।
3: अनो सुमिमासेन।
0: अरे सुनिए, माफ कीजिएगा।
3: निंजा 博物館 मारे दो इत्तरा ई देस्का।
0: निंजा म्यूजियम तक कैसे जाएंगे?
1: राहगीर जवाब देता है,
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस रास्ते पर सीधा जाएं।
2: 博物館 वा हिदारी नी अरिमास।
0: म्यूजियम बाई जानिब है।
1: माइक कहता है,
3: वाकरिमाश्ता।
0: समझ गया।
3: अरिगातो गोज़ाइमास।
0: बहुत शुक्रिया।
1: काइटो माइक से कहता है,
2: सा इको।
0: ठीक है, चले।
1: शायद म्यूजियम वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है।
0: जी, स्टेशन से म्यूजियम तक पैदल सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत है, और उस रास्ते पर निंजा से मुतालिक अशिया फरोख्त करने वाली या किराए पर देने वाली कई दुकानें हैं। तो आइए अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: माइक नियाउ ने काकोई
3: उरेशी ना। あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, निंजा म्यूजियम तक कैसे जाएंगे?
3: निंजा 博物館 मारे दो इत्तरा ई देस्का।
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए रास्ता पूछ सकते हैं।
0: निंजा 博物館 के मायने है निंजा म्यूजियम, मादे यानी तक, और दो इत्तरा ई देस्का का मतलब है कैसे जाएंगे। आज का नुक्ता रास्ता पूछने से मुतालिक है। اس کے لیے اپنی منزل کے مقام کے بعد حرف جار مادے لگا کر اس کے بعد دو اتارا ای ریس کا لگائیں۔ اتارا فعل ایکو یعنی جانا کی شرط یا شکل ہے۔ اس جملے کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: دو اتارا ای ریس کا، نینجا 博物館 مارے دو اتارا ای ریس کا، ninja 博物館 までどう行ったらいいですか？
0: अब रास्ता पूछने वाला एक मकालमा सुनिए।
5: あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: और अब इस मकालमे की तशरीह।
5: あのすみません。
1: अरे सुनिए, माफ कीजिएगा।
0: ये अल्फाज किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देस्का?
1: किंकाकुजी तक कैसे जाएंगे?
0: किंकाकुजी क्योटो के एक मशहूर मंदिर का नाम है। इस मकालमे में वहां तक जाने का रास्ता पूछा जा रहा है।
6: 101番の बस に乗ってください।
1: 101 नंबर की बस में सवार हूं।
0: 101番यानी 101 नंबर। बस, बस का जापानी तलफ्फुज़ है, और नोत्ते फेल नोरू यानी सवार होना की ते शक्ल है। नोत्ते कुदासाई के मैंने हुए सवार हूँ।
1: तो सामने अब सुनिए और दोहराइए।
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें। फर्ज करें आप जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका रास्ता भूल गए। आप किसी को नक्शे में अपने होटल के मकाम पर उंगली रखकर दिखाते हुए पूछना चाहते हैं कि इस होटल तक कैसे जाएंगे। इस होटल की जापानी है
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
0: बात का आगाज आनो सुमिमासेन से करें।
6: आनो सुमिमासेन, कोनो होटेल मादे दो इत्तारा ई देसुका? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब फर्ज करें आप क्योटो स्टेशन पर हैं और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म को कहते हैं
4: शिंकानसेन नो होम, शिंकानसेन नो होम।
0: तो सामीन कोशिश करें।
7: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं। दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी।
1: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
4: मिगी, हिदारी।
0: सीधा जाने को कहते हैं मस्सुगु। इसे भी दोहराकर मशक करें।
4: मस्सुगु।
0: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं, तो कहेंगे मस्सुगु इत्ते कुदासाई। और अगर दाएं मोड़ने का कहना हो तो फेल मगारू यानी मोड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगाते कुदासाई।
1: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है।
8: माइक नियाउ ने, काक्कोई।
3: उरेशी ना। अनो सुमिमासेन, निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसुका?
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました、ありがとうございます。
2: さあ行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: アブミヤーがサフリヒダイアトナマ。カイトアルマイクネミエプリフェクチャルジャネケリエハイウェイバスイステマルキーティ。バスケゼリエサファルメクチバクラクタヘレキンイエサファルカササザリアヘ。तो आज का मौजू है जापान की हाईवे बसें।
0: हाईवे बसों के जरिए कई मकबूल मकामात तक बराह रास्त जाया जा सकता है। अगर रात की बस से सफर किया जाए तो सोते हुए सफर करने के बाद इस वक्त बचाया जा सकता है।
1: ये बसें ज्यादातर किन मकामात के लिए दस्तयाब हैं?
0: हाईवे बसों के कई रूट हैं। टोक्यो से नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे बड़े शहरों के रूट मकबूल हैं। इसके अलावा कोहे फूजी, हाकोने और कुसात्सु ओनसेन गर्म चश्मा जाने वाले रूट भी हैं।
1: इनकी सीट की बुकिंग किस तरह होती है?
0: इंटरनेट वगैरह के जरिए टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है। बाज बसों में सीट नंबर तक भी तय किया जा सकता है। लग्जरी बसें कुछ महंगी होती हैं, लेकिन उनमें पांव फैलाने की जगह या अलग कमरे जैसी नशिस्तें दस्तियाब होने के बायस सफर ज्यादा आरामदेह हो जाता है।
1: यानी जापान में मुख्तलिफ इलाकों के सफर के लिए बस एक इंतखाब हो सकता है। अगले सबक में काइटो शुरी के निंजा स्टार फेंकने की कोशिश करता है।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 6 अक्टूबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिकों के परिजनों ने प्रधानमंत्री ताकायची सानाए से आग्रह किया है कि वे सभी अपहृतों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए मजबूत राजनय का सहारा लें। मंगलवार को योकोता ताकुया और ईजुका कोइचिरो ने पिछले महीने की अपनी अमेरिका यात्रा का ब्यौरा प्रधानमंत्री ताकायची को दिया। योकोता अपहृतों के परिजन समूह के प्रमुख हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी का 13 वर्ष की आयु में अपहरण कर लिया गया था। वहीं ईजुका जब 1 वर्ष के थे तब उनकी मां तागुची याइको को अगवा कर लिया गया था। योकोता और ईजुका जापानी सांसदों के साथ अमेरिका गए थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर उनका सहयोग मांगा था। योकोता ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे जरा सोचें कि अगर उनके किसी बच्चे का अपहरण हुआ होता तो उन्हें कैसा लगता। योकोता ने इच्छा व्यक्त की कि जापान सरकार मजबूत राजनय का सहारा ले ताकि उनकी मां अपनी बेटी मेगुमी से जल्द मिलकर उसे गले लगा सकें। योकोता ने बताया कि सोमवार को मेगुमी का 62वां जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक लंबा और कष्टदायी जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। योकोता ने अफसोस जताया कि वे अपहृतों को बचाने में नाकाम रहे। जापानी जांचकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय हैकिंग गिरोह के प्रमुख संदिग्ध को हिरासत में लिया था जिस पर दुनिया भर की कंपनियों पर साइबर हमले करने का आरोप है। जांच सूत्रों के अनुसार इस महीने के शुरू में संदिग्ध को जर्मनी के अधिकारियों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध 28 वर्षीय रूसी नागरिक है जो किलिन नामक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का एक प्रमुख सदस्य है। माना जाता है कि किलिन गिरोह ने कई वर्षों से रैंसमवेयर हमलों को अंजाम देकर दुनिया भर की कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रैंसमवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी कंपनी के डेटा को बिना अनुमति इनक्रिप्ट कर देता है और उस डेटा को जारी करने के लिए फिरौती मांगता है। जापान और अन्य देश इस गिरोह का मिलकर पता लगा रहे थे कि तभी अधिकारियों को सूचना मिली कि संदिग्ध जापान में है। खबर है कि मई में जापानी जांचकर्ताओं ने जापान के पश्चिमी शहर ओसाका में संदिग्ध को हिरासत में लिया था। जापान के चिप निर्माता रैपिडस का कहना है कि विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से वो 17 घरेलू और विदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है। कंपनी अगली पीढ़ी के अर्धचालकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास तेज कर रही है। इस उद्यम में तोशिबा समूह की एक कंपनी, दाई निप्पोन प्रिंटिंग और तोप्पान जैसी जापानी कंपनियां हैं तथा विदेशों से अमेरिकी और भारतीय कंपनियां हैं। रैपिडस का कहना है कि ये साझेदारी रैपिडस कोर नामक एक नए ढांचे का पहला चरण है। इस पहल के तहत चिप के डिजाइन और उत्पादन से जुड़ी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाया गया है। उन्नत चिप क्षेत्र में कामगारों की कमी के बीच ये पहल की गई है। रैपिडस कंपनी अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उत्तरी जापान के होक्काइडो में 2 नैनोमीटर की उन्नत चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना चाहती है। जापान सरकार ने लगभग 30 खरब येन यानी करीब 19 अरब डॉलर की सहायता देने का वायदा किया है।

0: वक्तव्य में कहा गया कि तीनों देश त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार सामूहिक रक्षा से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन की दिशा में तत्काल कदम उठाएंगे। वक्तव्य में आगे कहा गया है कि समझौते के तहत बनी सहमति के आधार पर वे सऊदी अरब में सैन्य बल व साधन उपलब्ध कराने और उनकी त्वरित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग में राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। पश्चिमोत्तरी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। यह क्षेत्र इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी पीटीआई का गढ़ है। इमरान खान को 2022 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और 2023 में उन्हें भ्रष्टाचार व अन्य आरोपों में जेल भेज दिया गया था। उनके समर्थकों के अनुसार ये आरोप राजनीति से प्रेरित थे। इमरान खान की तीन बहनों को पिछले महीने सार्वजनिक व्यवस्था कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारी उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। नेपाल चीन सीमा पर अगस्त में आई भीषण बाढ़ की आपदा के बाद नेपाल सरकार ने तलाश और बचाव अभियान स्थगित करने का फैसला किया है। सरकार ने सोमवार को सैन्य और पुलिस कर्मियों से जुड़े अभियानों को स्थगित करने की घोषणा की। अब केवल आवश्यक तलाश और बचाव कार्य ही किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि आपदा के 40 दिन बाद जीवित लोगों के मिलने की संभावना कम है। उन्होंने बताया कि नई जानकारी मिलने पर अभियान फिर से शुरू किए जाएंगे। 26 अगस्त को आई इस आपदा में नेपाल में 1455 लोग मारे गए और 5200 से अधिक लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी हैं। चीनी मीडिया ने बताया कि चीनी क्षेत्र में 43 लोग मारे गए और 510 से अधिक लापता हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。

0: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
0: わかりました。ありがとうございます。
1: さあ行こう。
2: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
3: माइक नियाउ ने।
4: माइक जंच रहे हो?
3: काकोई।
4: रौबदार।
2: माइक ने जवाब दिया।
0: उरेशी ना।
4: दिल खुश हो गया।
2: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
0: अनो सुमिमासे।
4: माफ कीजिए।
0: निंजा हकबिस्कन मादे दो इत्तरा ई देसु का?
4: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
2: आदमी ने उत्तर दिया।
1: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
4: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
1: हकुबित्सुकान वा हिदारी नि अरिमासु।
4: संग्रहालय बाईं तरफ है।
2: फिर माइक ने कहा।
0: वाकरिमाशिता।
4: समझ गए।
0: अरिगातो गोजाइमासु।
4: धन्यवाद।
2: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
3: सा इको।
4: तो चलो।
2: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
4: आज का मुख्य वाक्य है
0: निंजा हकबिस्कन मादे दो इत्तरा ई देसु का?
4: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
2: इस वाक्य में
5: निंजा हकुबुत्सुकान
2: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
5: मादे
2: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
5: दो इत्तरा ई देसु
2: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
4: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
5: मादे,
4: और उसके बाद कहते हैं
5: दो इत्तरा ई देसु का। इत्तरा
2: है क्रिया
5: इक
2: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
4: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
5: दो इत्तरा ई देसु का निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का। निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
6: अनो सुमिमासे। किंकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देसु का? 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई।
4: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
2: पहले एक आदमी ने पूछा।
6: अनो सुमिमासे।
4: माफ कीजिए।
2: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
6: किंकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देसु का?
4: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
2: इसमें
5: किंकाकुजी
2: है किंकाकुजी मंदिर, जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया।
6: 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई।
4: बस नंबर 101 ले लीजिए।
2: इसमें
5: 101 बान
2: का अर्थ है 101 नंबर।
5: बस
2: का अर्थ है बस, और
5: नोत्ते
2: है क्रिया
5: नोरु
2: यानी चढ़ना का ते रूप, इसलिए
5: नोत्ते कुदासाई
2: का मतलब है चढ़िए।
4: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: दो इत्तरा ई देसु का? किंकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देसु का? あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
5: कोनो होटल, कोनो होटल।
2: तो
5: अनो सुमिमासेन
2: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: अनो सुमिमासेन कोनो होटल मादे दो इत्तारा ई देस का। あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
4: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
5: मिगी
4: और बाएं को
5: हिदारी।
4: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: मिगी मिगी हिदारी, हिदारी।
2: सीधा का जापानी शब्द है
5: मस्सुग।
2: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
5: मस्सुग, मस्सुग।
4: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
5: मस्सुगु इत्ते कुदासाई।
2: आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3: マイク似合うね。かっこいい。
0: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
0: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ。行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
4: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइटो हाईवे बस लेकर मिए प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
2: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है, क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
4: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
2: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
4: अगले पाठ में काइटो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
2: सायोनारा।
7: रेडियो जापान टोक्यो।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त में तय पाने वाले अपने मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब में तेजी से फौजी दस्तों की तैनाती के लिए जरूरी इकदाम करने का फैसला किया है। तीनों ममालिक ने पीर को सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी अरब और पड़ोसी मुल्क यमन के हुकूमत मुखालिफ हौसी बागियों के दरमियान हमलों का तबादला जारी है। बाद में जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में हौसी बागियों का नाम लिए बगैर सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मुजम्मत की गई। बयान में कहा गया है कि तीनों ममालिक से फरीकी मुआहदे के मुताबिक अपने मुश्तरका दिफाई वादों पर अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर पेशरफ्त करेंगे। बयान में ये भी कहा गया है कि वो सऊदी अरब में तय शुदा फौजी दस्तों और सलाहियतों की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदाम करेंगे और उनकी तेज़ी से तैनाती यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के हामी उन्हें कैद से रिहा करने का मुतालबा करते हुए दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हजारों लोग इतवार के रोज सड़कों पर निकल आए, जहां पर खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की बुनियादी ताकत है। इमरान खान को 2022 में इख्तदार से बेदखल कर दिया गया था और अगले ही साल उन्हें बदनवानी और दीगर इल्जाम में जेल भेज दिया गया। उनके हामियों का कहना है कि इन इल्जाम का सबब सियासी था। खान की तीन बहनों को गुज़िश्ता माह अमनियामा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। मुजाहिरीन उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। नेपाली हुकूमत ने चीन के साथ वाक़े अपने सरहदी इलाके में अगस्त में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोड़े गिरने और अचानक आने वाले सैलाब की तबाही के बाद तलाश और बचाव के कामों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। हुकूमत ने नागुजीर तलाश और बचाव की कोशिशों के अलावा फौज और पुलिस के एहलकारों पर मुश्तमिल कार्रवाइयों को रोकने के फैसले का ऐलान पीर को किया। हुकाम ने कहा कि आफत के 40 दिन बाद जिंदा बच जाने वालों को ढूंढ निकालने का इम्कान कम है। उन्होंने कहा कि अगर नई मालूमात सामने आईं तो कार्रवाइयां दोबारा शुरू की जाएंगी। 26 अगस्त को आने वाली आफत में नेपाल में 1455 अफराद हलाक और 5200 से ज्यादा लापता हुए। लापता होने वालों में 5 जापानी शहरी शामिल हैं। चीनी ज़राए इब्लाग ने खबर दी है कि सरहद की चीन की जानिब 43 अफराद हलाक हुए और 510 से ज्यादा अब भी लापता हैं। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। शुमाली कोरिया के हाथों अगवा शुदा जापानी शहरियों के अहले खाना ने वजीर आजम ताकायची सनाए पर जोर दिया है कि वो तमाम मगवियान को जल्द अज जल्द वापस लाने के लिए पुरजोर सिफारतकारी करें। और जापानी तफ्तीशकारों ने एक बैन अलावामी हैकिंग ग्रुप के एक मुश्तबा अहम रुकन को हिरासत में लिया है। इस ग्रुप पर दुनिया भर की कई कंपनियों के खिलाफ साइबर हमले करने का इल्ज़ाम है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए nhk.jp/urdu।